ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथवी तिथि, तदनुसार 4 जून 2026, सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

सात बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 7:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR गौतम के साथ। 8 बजे ऋचा वर्मा रहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तराने गाने नए पुराने गौतम के साथ। 10 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 10:05 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम का हिमानी दत्ता के साथ आप सुनेंगे। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर बबीता रावत लेकर आपके साथ रहेंगी प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स।

12 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का, और हिमानी दत्ता के साथ आप वेस्टर्न म्यूजिक का मजा लेंगे 12:05 पर। 1 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का, 1:05 पर बबीता रावत के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। 2 बजे प्रोग्राम आशा के साथ एफएम शाहिद

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरण

0: उच्च संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को

0: सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
2: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
7: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation.

दुर्गेश ब्रा, आज के बेस्ट प्रोग्राम के लिए शुक्रिया दिल से। कोई कहना लिखना बताई दिए से दुर्गेश जी, यू वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन। और यते जय माता दी रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवादी प्रवी कना होने की ना एंजॉय करो इसको ना लिखी दिए से। अभिजीत फ्रॉम बुकाजान मिखल रेगुलर लिसनर दाइब्राई मन भाल भाल कना प्ले कर दिए कारण बिग थैंक्स को कना लिखी दिए से। यू वेलकम अभिजीत एंड थैंक यू सो मच। और इतने निशना हो ताई ट्यून इन करी थाकिब और मिखल लोग जोड़ा कि ना इतने निशना एंजॉय करी थाकिब कारण को दिए से। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी खान कुन कुन मेसेजेस का लिखी ना बताई दीजिए, अपनी खान सब की भी बिशी खुशी बात जाना दिए से। यारे टाइम भी पुंजी जाए से जो कहीं जाते लास्ट के दी दिखी ना आज लगा प्रोग्राम जाते सेस कुरी दिया वो डुएट्स एंड कॉरसेस लगा होली भी एक करो बजे अथवा एक ता लाइव फोन इन प्रोग्राम अपनी खान क्या नहीं दिया वो तो अपनी खान सब भी फोन नंबर जानी है से तद भी हिस्सा लो बोली कारण अपनी खान सब की इन्वाइट करी है से। तो जाते लास्ट के दी हुनी होनाई दिए से एक ता के लगा एक द पैशनेट वोकल्स एंड शिल्पा राव लगा एक द ग्रेसफुल वॉइस व्हिच मेट दिस सॉन्ग एंड इंड्यूरिंग फेवरेट बचना ए हसीनो फिल्म रा म्यूजिक दिसे विशाल और शेखर लिरिक्स अनविदा दत्त गुप्तन हुनी किना एंजॉय कर भी। और रोहित पिछले अपने कान हुनी अब वर्ल्ड न्यूज दिल्ली पर रिलीक दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हुनी भी और हैव अ ग्रेट आवर्स अहेड।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: Well, my dear friends, Michael O'Day, the next caller, thank you, sir. Hello.
1: Jai Mata Di.
0: Hello, Jai Mata Di. Program is welcome.
1: Mera naam Turan Verma hai.
0: Turan Verma ji.
1: Turan district, Jaipur, Rajasthan.
0: Ji.
1: गांव का अंतमल बुदला से बात करा सर।
0: ओके पुरान वर्मा जी, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज का दिन कैसे रहा?
1: बस सर बढ़िया रहा, यहाँ बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज फिलहाल।
0: ओके, यहाँ भी बढ़िया बढ़िया मौसम है। और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा इंसान।
0: ओके इंसान,
1: और उसमें गाने के बोले जब से दिल दिया है।
0: जब से दिल दिया है,
1: रब्बा मेरे रब्बा।
0: मेरा बस इंसान का फिल्म से ये वाला है, कोई ना जब एक है और सथिया तू मेरे एक है, सिर्फ दो गाने हैं।
1: सिर्फ दो है
0: जी।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा तू चोर मैं सिपाही, ये मूवी मिल जाएगी आपके पास?
0: तू चोर
1: मैं सिपाही,
0: तू चोर मैं सिपाही, शायद मेरा पास ये नहीं है।
1: तो फिर मूवी का नाम रहेगा डार्क द फायर।
0: डार्क द फायर, हाँ
1: हाँ जी। इसमें कौन कौन से गाने आप बताओ?
0: डार्क द फायर से चेहरा तेरा जहरा, दिल धक धक धर के, दिल दीवाना दिल दीवाना, लकी कबूतर,
1: लकी कबूतर,
0: हाँ लकी कबूतर। ओके, और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा
1: जी? सबसे बोलता हूँ आपको,
0: थैंक यू।
1: और आकाश मैंने कोई ना, तो जो प्रोग्राम बंद हो गया था ना सर, तो हम बहुत उदास हो गए थे कि इतना अच्छा कार्यक्रम था और ये बंद हो गया था, हम उदास हो गए। तो बहुत खुशी हो गई हमारे को कि ये कार्यक्रम वापस चालू हो गया सर।
0: हाँ, राइट, थैंक यू।
1: मेरा दोस्त राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर साहब है, अमल है, विमल है, अंजलि है, और जितनी कोरोना के कार्यक्रम में लाइव कॉलर अब जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, न्यूज AIRF, DTS और कोरोना के श्रोता के पास रेडियो पर उन श्रोता के लिए।
0: क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच पुरान वर्मा जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा। सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके, यू वेलकम। My dear friends, Buran Verma, Rajasthan Rami Khan Laga, regular listener thakya se, tai request ko laga gira Rami Khan, huni hobo Shukhbinder Singh, awaste, Dark the Fire, film bra. Music this is Rajesh Roshan, lyrics Samir, aur tai naam loa sopke, edu gate dedicate kuri diye se.

0: Well, my dear friends, next caller
1: Hello.
0: Hello.
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते हु इज ऑन द लाइन
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ ग्राम बछोड़ा तहसील नांदी जिला उज्जैन से
0: ओके प्रेम सिंह जी प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज का दिन कैसे रहा
1: जी बहुत ही अच्छा रहा मेरा दिन और आपसे बात हो रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है
0: क्या बात है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
1: जी बता रहे सर
0: जी
1: जी आपके इधर मौसम कैसा है जी
0: मौसम बहुत बढ़िया
1: जी अच्छा फिल्म का नाम है जी यहाँ पर भी मतलब बादल छाए हैं थोड़ी हवाएं भी चल रही है
0: क्या बात है
1: और थोड़ी बरसात भी हुई थी
0: अच्छा जी हाँ और बताइए कौन सा बोला
1: गाने के बोले दिल फिल्म का नाम है दिल तो पागल है
0: दिल तो पागल है ओके
1: गाने के बोले मुझको हुई ना खबर
0: मुझको हुई ना खबर
1: जी
0: अच्छा जो दिल तो बकल है का फिल्म से जो जो गीत यहाँ उपलब्ध है मैं आपको बताता हूँ आरे रे आरे एक है पुलिस से सूरत एक है दुलना एक है दिल तो

0: अच्छा लगा और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: थैंक यू सो मच.
0: यू वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, अमीखल नगर लिस्नर प्रेम सिंह फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश पर और ताहिर रिक्वेस्ट को लगा गीत अमीखन इदिया खुनी हब दिल तो बगल है फिल्म रा उदित नारायण और लता मंगेशकर वस्ते. म्यूजिक दिसे उत्तम सिंह, लिरिक्स अनंत पक्षी और ताई नाम लुआ सबके इदु की टिकट कर दिए से होनी की ता एंजॉय कर भी माई डियर फ्रेंड्स.

0: Well, my dear friends, welcome to the next caller. Hello. Hello,
1: Namaskar.
0: Hello, Namaskar.
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश, प्रोग्राम में स्वागत है शिमला से। और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम बताइए।
1: जी जी जी जी मैं आपको फिल्म का नाम बता देता हूँ।
0: जी

0: आपके पास मिलेगा हम है तुम्हारे सनम,
1: हम है तुम्हारे सनम, ये मैं लिखता हूँ, हम है रहे, हम है लाजवाब, मेरा बस सॉरी वो वाला फिल्म नहीं है।
0: अच्छा, हम फिल्म का नाम हम है तुम्हारे सनम वो नहीं है?
1: नहीं है।
0: अच्छा,
1: दूसरा फिल्म
0: तो मैं आपको दूसरा बताता हूँ
1: जी,
0: दीवाना है,
1: दीवाना होगा। हाँ
0: हाँ, दीवाना
1: जी, कौन सा वाला गीत?
0: उसमें गाना है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा
1: जी, कुमार सानू
0: जी। हाँ, कुमार सानू वाला।
1: ओके, और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
0: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेटेगा,
1: थैंक यू,
0: पूरन परमार, रमेश प्रजापति, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार, राम नरेश और दुर्गेश नागरपुरी और अमल भस्माचार्य है और विमल भस्माचार्य है और अंजलि भस्माचार्य है और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
1: ओके, और राकेश जी बताइए आज मतलब आप घर पे है या खेत से फोन करता है?
0: नहीं नहीं, मैं तो घर पे, हमारे यहाँ बारिश हो रही है।
1: बारिश? अच्छा
0: जी, अभी बारिश हो रही है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है और अभी हमारे 19-20 डिग्री तक तापमान है क्योंकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई हमारे यहाँ।
1: क्या बात है, ठीक है, तो ख्याल रखना और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, आप ये सुनो का रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: धन्यवाद।
1: ओके, यू वेलकम, बाय। My dear friends, I'm Mikhan Laga, regular listener Ragesh from Shimla. Tahi request for Laga Geet, I'm Mikhan Huniyabu Kumar Sanu Awaste. Music is in Atim Arushravan, lyrics Samir, film Deewana Vara. Or Tahi Naam Loa Sokke, itu ki titiket kwe diye se, Hunikina enjoy kwe bhi, my dear friends.

0: Well, my dear friends, we just have enough time for one lucky caller.
1: Hello, sir, namaskar.
0: Hello, namaskar. Kun koi aise?
1: जी सर, भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार।
0: ओके भगवान सिंह जी, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी सर, फिल्म का नाम है रकीब और गाने के बोले चना वे चना।
0: फिल्म का नाम फिर से?
1: रकीब।
0: रा?
1: रकीब, रकीब,
0: रकीब।
1: हाँ, गाने के बोले चना वे चना।
0: मेरा पास शायद ये वाला फिल्म मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है।
1: तो सर आप सुना दीजिए सत्यमेव जयते का मेरी जिंदगी है तू।
0: सत्यमेव
1: जयते का मेरी जिंदगी है तू।
0: अच्छा, मेरी यहाँ में तीन तो गीत उपलब्ध है, आपको बताता हूँ। जानो मेरी जान
1: जी,
0: जानो एक है और तू जान से एक है, कौन सा वाला?
1: सर इसमें से कोई सब सुना दीजिए जो आपकी इच्छा हो।
0: अच्छा, आप फिर से गाने का पोल बताइए।
1: मेरी जिंदगी है तू,
0: मेरी जिंदगी है तू, मैं हाँ मेरी जिंदगी है तू मिला है।
1: हाँ,
0: और पता है तो किसका नाम लेना चाहूंगा?
1: ये सर राकेश जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और अमल भस्मचारी, विमल भस्मचारी, भाईकोन मुंडा, रमेश पात्रे, और अंजलि तिवारी, अंजलि अंजलि भस्मचारी जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, अविनाश जी हैं।
0: ओके, थैंक यू सो मच। तो सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग,
1: और आपको भी डेलिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: ओके, नमस्कार
0: नमस्कार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज लगा लास्ट लकी कॉलर, ताहि रिक्वेस्ट को लगा गीत हमें का नखुनी बो सज्जा मेवा जायती टू फिल्म ब्रा जुबिन नौटियल और नेती मोहन अवस्थे और ताहि नाम लो

0: प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपना मैसेज भेजते हैं तो हमारा बस यही मन करता है कि हम सारे गाने प्ले कर दें, पर क्या करें ना, वक्त का तकाजा होता है और कहीं ना कहीं हम उस पे मजबूर होते हैं, कुछ ही गाने हम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर करते ना हुए हम गाना प्ले करने वाले हैं, और ये गाना कौन सा है, कौन सा है? जी हाँ, सबसे पहली फरमाइश जो आज हमारे पास आई है वो कुछ खास है और बहुत डांट डपट के भी कहती हैं कविता उत्तराखंड से कि हद करते हैं आप, मेरा वाला सॉन्ग प्ले नहीं है, ऐसी क्या बात हुई है? और लिखा है कि एक महीने से केवल संदेश शामिल किए जा रहे हैं और सॉन्ग प्ले नहीं किया जा रहा। भाई देखिए, अब आपका पसंदीदा गाना हम प्ले कर रहे हैं तो नाराज मत होइए, और ये लीजिए आपकी पसंद का गाना यहाँ पर आपके लिए।

और मुलाकातों के सिलसिले आपकी मैसेजेस के द्वारा हमसे होते रहेंगे रूबरू। और यहाँ पर अगला जो हमारे पास मैसेज आया है वो है पंकज अमरावती से। इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है साजन फिल्म का, SP बाला सुब्रमण्यम का याग्निक की आवाज में ये वाला गाना।

अभिजीत आवाज लगा रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से इन्होंने चलते चलते फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाए इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रख रखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। राजेश कुमार चौहान जालंधर से लिखते हैं, नमस्कार और प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ उनका पसंदीदा गीत भी हम चला देते हैं। कभी कभी फिल्म से उन्होंने मैं पल दो पल का शायर हूं मुकेश की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको सुना देते हैं।

कभी कभी कैसा होता है ना कि एक ही जो गीत होता है ना उसमें हमारी पूरी जिंदगी की जो दास्तान होती है वो छुपी हुई होती है और हम उन्हें बस सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये गीत कुछ ऐसे ही होते हैं और मुझे लगता है कि मुकेश जी की आवाज में ये गाना तो बहुत ही जबरदस्त था। अगला गाना भी जो आने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में बहू बेगम से हम इंतजार करेंगे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज तो जबरदस्त है, लेकिन साथ ही साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह जी भी बहुत ही जबरदस्त आपकी जो मध्य प्रदेश से आपने रिक्वेस्ट की है, पद्मा टॉकीज नेपागंज नेपानगर से, बहुत ही प्यारा गीत है ये, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।

बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले हो जाए, और अगला जो गाना हम प्ले करने वाले हैं नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से फरमाइश करें। इसके अलावा हमारे पास हितेंद्र दास ने भी कहा है कि किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिए, असम स्टेट से हैं। इसके अलावा सौरव अरनेजा जी भी कह रहे हैं हम आपको सुन रहे हैं गाजियाबाद से, और हमारा भी किसी भी गाने के साथ नाम ले लीजिए। तो दीजिए आप सभी लोगों का नाम, और आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है ये सॉन्ग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: जी हाँ, आज आप 4 से 5 सुनेंगे संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ। और अभी जो प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में मेरे साथ आप सभी लोग 9868107070 पर अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और अब अगली जो रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं वो कुछ खास खास होने वाली, क्योंकि ये जलवा बिखेरने वाला है ये गाना। समझ गए होंगे, पटियाला से जीएस गिल जी, आपका ही पसंदीदा गाना हमने प्ले कर दिया है, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और अगले गाने का जलवा आप सभी लोग देखेंगे। इम्तिहान फिल्म से है ये गाना और लिखते हैं कौन, लिखते हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। जय जिनेंद्र आपको भी और परवणी महाराष्ट्र से लिखा है इन्होंने और ये श्रोता संघ है वहाँ के, तो आपकी फरमाइश पर ये गाना।

वैसे चाह तो आप भी रहे होंगे कि आपकी पसंद का गाना चले, और अब अगला जो गाना होने वाला है शुरू, उसका नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा गाना भी है, और नाम जो है मनोज कुमार, अंजलि कुमारी, हिमांशी, प्रियांशी, दिल्ली से, संत नगर बंगाली कॉलोनी से इन्होंने फरमाइश की है इस गाने की। और साथ ही साथ एक और है जो कहते हैं कि किसी भी गीत में मेरा नाम ले लीजिएगा, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा के साथ। कौन है ये? हाँ, बहुत लंबे शंबे नाम है यहाँ पे, और कस्बा गुनौर यूपी से इन्होंने लिखा है हमें, और पूरी अब्बासी फैमिली, मोहम्मद सईद, निगहत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अमान, सबके नाम ले लिए मैंने। और ऊपर कोट बुलंदशहर से हैं, मतलब इसके अलावा भी, मतलब जो एड्रेस है इनका, अब मैं तो पहुंचने वाली हूँ आपके पास। और आदाब लिखते हैं, तो चलिए ये गाना आपके लिए भी डेडिकेटेड है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबिता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मीरा वाला सॉन्ग और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है शुभजीत कोलकाता से। इन्होंने परिंदा फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है, तो लीजिए और आपकी फरमाइश पूरी भी हो गई।

इससे पहले जो आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट सुनी थी ना, वो रंजीत जी की थी मुकंदपुर से। और अब आ चुके हैं सुभजीत की पसंद का ये गीत, कोलकाता से आपने फरमाइश की है, तो लीजिए सुनिए, एंजॉय कीजिए।

वैसे हमसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, शायद अगला प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए, और रहिएगा उनके साथ आशियाना प्रोग्राम में। उसके बाद होगा रेडी डॉक्टर का सिलसिला, और वर्टिगो कॉज सिम्टम्स एंड क्योर, इस पर बात होगी आज। जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रमों के द्वारा हमसे, हम यूं ही आपके साथ जुड़े हैं, हमारा और आपका तो दिल का बंधन है ना, तो बस ये दिल का रिश्ता यूं ही बना रहेगा आकाशवाणी रेनबो के साथ। अभी ये गाना आपके लिए, और मैं लेती हूँ यहाँ से विदा, आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर।

102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। प्रोग्राम का समय हो गया है आशियाना और लेकर आया हूं मैं, मेरा नाम है शाहिद, और हमेशा की तरह से आज बात सीनियर सिटीजन्स की, हमारे वृद्ध बुजुर्गों की।

अक्षय वत। तो बात करेंगे आज अपने इस आशियाना में बुजुर्गों के बारे में, उनकी हेल्थ वेलबींग के बारे में, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट। बने रहे आप हमारे साथ रेनबो पर।

आशियाना में हम हर थर्सडे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों, हमारे बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन्स के बारे में और उनसे जुड़े मुद्दों पर और उनके लोगों के बारे में भी जिनसे जुड़ा हुआ है आज का ये प्रोग्राम, यानी कि वो जिनकी जिम्मेदारी है उनकी केयर की। सीनियर सिटीजन्स हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के प्रेशियस इनवैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इनका केवल हमारे बीच होना ही हमारे जीवन का अत्यंत सुखद और सुकून भरा एक अनोखा एहसास होता है। हमारे बुजुर्ग न सिर्फ इस समाज के ट्रेडिशन कीपर्स और मेंटर्स हैं, बल्कि यही तो हैं जिन्होंने और जिनकी सुनाई कहानियों ने हमें जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी के उतार चढ़ाव में मजबूती से आगे बढ़ते रहना समझाया। इनकी हर बात में होता है जिंदगी भर काम आने वाला एक सबक और इनकी कहानियों में होती है रूहानियत, खूबसूरती और एक सच्चाई। बुजुर्गों की बातें वक्त की किताब में लिखी बेशकीमती मोती हैं।

0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: मंगल भवन मंगल
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के बारे में और आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। उम्र बढ़ने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, सबसे पहले उठने बैठने में परेशानी और साथ ही कोई ऐसी छोटी मोटी तकलीफ थी जिस पर तब ध्यान नहीं दिया जब शुरुआत थी और अब वो बढ़कर एक बड़ी बीमारी की शक्ल ले चुकी है। कहते हैं ना कि बुढ़ापा अपने आप में एक इम्तिहान होता है। बढ़ती उम्र में फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, तो अच्छा हो कि वक्त से ही वो नेसेसरी लुक आफ्टर और सेल्फ असेसमेंट शुरू कर दिया जाए। ताकि बुढ़ापे में आपको उतनी तकलीफ ना उठानी पड़े, तो जरूरी है कि बुजुर्गों की किसी भी तकलीफ या बीमारी को घर के दूसरे लोग लाइटली ना लें और खास तौर पर उनको किसी ना किसी हल्की फुल्की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, बल्कि अगर हो सके तो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में उनको प्रोत्साहित करें और उनका साथ भी दें। इस तरह से ना सिर्फ वो एक्टिव रहेंगे बल्कि उनका हौसला भी बढ़ेगा और आपका साथ मिलेगा तो उनका वो सफर यानी कि वो वॉक भी बेहद ही खूबसूरत और आसान भी हो जाएगी।

92.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। हमारी जिंदगी में बुजुर्गों का, हमारे पेरेंट्स का जो स्थान, जो मकाम होता है, वो दुनिया के सारे रिश्तों से बढ़कर सबसे ऊपर और एकदम स्पेशल होता है। उनका अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी का वो डिवोशन, सेक्रीफाइस और डेडिकेशन कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और कामयाब बना सकें, उनके एक्सपीरियंस से सबक ले और खुद वो परेशानियां ना उठाएं जिनसे वो गुजरे। हमारे बुजुर्गों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला करना, उनका मुकाबला करने, हमारी इमोशनल, फिजिकल और सोशल नीड्स को पूरा करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे घर के बड़े, हमारे बुजुर्ग न सिर्फ हमें काबिल और सक्सेसफुल बनाने में जरूरी योगदान देते हैं, बल्कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा, मार्गदर्शन और गाइडेंस भी इन्हीं से मिलती है।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
10: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
10: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

हर कदम हर घड़ी हमारे बुजुर्गों को हमारी जरूरत है, और सिर्फ उनको ही नहीं हमें भी उनकी जरूरत है। हमारे घर के बुजुर्गों के बारे में एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जितना जरूरी परिवार उनके और उनकी वेलबीइंग के लिए है, उतना ही जरूरी हमारे घर के वरिष्ठ का हमारे लिए भी है। परिवार को एक डोर से बांध कर रखना, आपस में प्यार मोहब्बत को बनाए रखना, परिवार का मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहना और कठिनाइयों का मिलकर मुकाबला करना, ये सब घर के बड़े यानी हमारे बुजुर्गों के ही दम पर आसान हो पाता है। लेकिन कभी कभार हमारे ये पिलर ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ अपने परिवार के छोटों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, मनमानियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं और बस खामोश तमाशाई बनकर रह जाते हैं। अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को खुद ही अंडरस्टिमेट कर लेते हैं और ईगो एरोगेंस के सामने सरेंडर कर देते हैं। यही वक्त होता है अपनी बात को मजबूती से रखने का, बिखर रहे और दूर हो रहे परिवार जनों को फिर से एक सूत्र में बांधने का, प्यार का सबक फिर से पढ़ाने का। याद रखें, जिस परिवार में बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वहां खुशियों के बाग लहलहाते हैं और परिवार एकजुट होकर हर चैलेंज का डटकर सामना करता है और कामयाब होता है।

0: FM 드래그 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Those who build the nation with their hard work and pride, ESIC stands strong right by their side. In moments of joy or times of despair, ESIC is always there.
4: Since 1952, ESIC has grown into one of the strongest pillars of support for India's workforce. Nearly 40 million insured workers and over 150 million beneficiaries reaching every state, every family. Cashless medical care, wage support during illness and complete protection from maternity to unemployment.
3: With new labor codes, every worker can now rely on simpler, stronger and more modern social security, over 165 hospitals, seamless online services and a legacy built on trust.
4: ESIC, 75 years of standing by every worker, every single day.
5: ESIC, chinta se mukti.
6: FM Dragoban. News, music and entertainment.
7: This is FM Dragoban.
6: FM 103 megahertz.
8: Sup santia salam or namaste hunithaka sabilla kapnarkan sabke swagat kore se Akishwani FM Dragapan 110 MHz pra raji apnarkan karone ako anidiye se SMS request that is moilaga pasand gana SMS request hindi flame gets program te judi apnarkan la pasandita git khan apnarkan huni bole mon ase likhi kina pathai dibi 9436805333 number ko koi diye se 9436805333 eto number de likhi kina pathai dibi kintu jitia apnar khan text message likhibo film laga naam aro gana laga title tik tak likhi kina pathai dibi titia moi yate bra apnar khan pasand kora la git khan bajai dia hobo to huni raga sabilak moi apnar khan la messages rukhi thakibo eto somoy to huribo Pure Impossible film ki git gaya se Anushka Manchanda aro Salim Merchant.
9: Boy.

इश्क में जीना इश्क में मरना फ्लेम कुमार सानू और सदना सरगम गोवा गीत के हुनी बुली मन हो गा पसंद कर अनुरोध कर गोलाघाट आसाम प्रा लाखी और लाखी प्राय गीत तो डेडिकेट कर दिए रमेश पात्र रुनु पात्र अमल बसुमतारी भाईकन मुंडा दिबासीस हजारिका जोगेंद्र रोंगपी सोनाली इंगटीपी सुनीता बसुमतारी मंदिरा हंड्रिका टिमुंगपी और प्रेमिका टेवा अपना खान सब एक साथ मिलीगिना हुनिबी अपना खान के डेडिकेट कर दिए से लाखी ब्रा तो हुनिबी और एन्जॉय करिबी

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों

0: के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास

0: विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues

0: ban on products containing tobacco or nicotine, including all forms of gutkha, pan masala, flavored or scented chewable products. MLA Jengas Sep emphasizes need to steer young people away from substance abuse and other harmful activities. Kohima Municipal Council reminds residents that disposal of septic tank waste into drain, nalas, open land or water bodies is strictly prohibited. New and Renewable Minister Prahlad Joshi says India made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh announces Anusandhan National Research Foundation, ANRF, supported digital portal to facilitate training in patent filing and research paper writing. Government increases financial powers to field commanders to strengthen operational efficiency. Turning to the world of sports, Indian boxers dominate world rankings. Jasmine Lamboria climbs to world number one in women's 57 kg category, Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg surge into top three. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunand advanced to men's doubles quarterfinals. And in weather, India Meteorological Department forecast heavy to very heavy rainfall to continue over northeast India during the coming 5 to 6 days. Nagaland likely to experience thunderstorm, moderate lightning and gusty winds till 7th of this month. That is all we have in this news headlines.
1: FM Dragoban.
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment. FM 103 MHz.
3: Hello.
4: Rajesh ji, main police thane se bol raha hu.
3: Phir se?
5: Aap digital arrest mein ho. Dusre kamre mein jaiye. Akele. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख?
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे?
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत करेंगे पुरानी हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम।

शबीर कुमार और अलकायत निकलगा से प्यार हो गया फिल्म शुनिले प्रोग्राम यार दूसरा गीत शुनब लता मंगेशकर किशोर कुमार और खरस लगा वास्ते फिल्म प्यार में सौदा नहीं।

प्यार में सौदा नहीं फिल्म लता मंगेशकर किशोर कुमार और खरस लगावास पर गीत दिया हुनिया लगत हुनी थका सब बेला का जी कारण हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिए याद प्रसेस करी दिया से हुनी थका सब बेला का आज राति अपनार खान कारण सबसे भल राति हबी और आमी खान आको लकुरिया हब आहिया काली फुजिर छह बजे हुनी थका सब बेला गुड नाइट।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।